मुझे रंग दिखने लगे, इतने खूबसूरत, हर कोने में अनोखी रोशनी, बिल्कुल स्पष्ट, संदर्भ, मेरी सांसें चलने लगी, और हाँ, तुम समझो न समझो, आजादी जैसा, रंगीन समा, और इतनी खूबसूरती के बीच पिछली जैसी मैं चमकने लगी हूँ।